0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: संगीत संगीत
3: संगीत रुदी खुराक है
2: आत्मा दी आवाज है
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है
3: जिंदगी सांझ है खिमा है
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है
3: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ
3: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद.
1: व्हाट इज लाइफ? जब ये सवाल पूछा एक 18 साल के यंग जेंटलमैन से तो जवाब आया कि जिंदगी कोई पार्किंग स्पेस नहीं, रेसिंग ट्रैक है. सो जस्ट कीप ऑन मूविंग एंड डोंट लेट योर फेलियर स्टॉप यू. Well, isn't that a very positive, very optimistic approach? इसलिए किसी और से नहीं, खुद से वादा करें कि ये सब rejections, failures आपको रोक नहीं पाएंगे बढ़ने से. ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है. ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है.

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: जब हम किसी कामयाब इंसान की जिंदगी को देखते हैं, तो हमें सरफेस पर ऊपरी तह पर सिर्फ उनकी सक्सेस नजर आती है। उनकी मंजिल कामयाबी का वो सफर जो उन्होंने तय किया, जिसका हिस्सा मायूसियां और नाकामयाबियां भी थी, वो नहीं देख पाते। एजे क्रॉनन का नॉवल द स्टार्स लुक डाउन आज एक क्लासिक नॉवल माना जाता है, पर आपको पता है कि 22 बार इस नॉवल को रिजेक्ट किया गया। पब्लिशर्स ने 22 बार इसे छापने से मना कर दिया था। अब जरा सोचें कि अगर पहली बार ही रिजेक्ट होने पर एजे क्रॉनन ने हार मान ली होती, तो क्या वो कभी अपनी इस मंजिल तक पहुंच पाते।

0: ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ।
1: आजकल का ट्रेंड ये है कि हम हर काम में इजी सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज ही गलत है हमारी। फॉर एग्जाम्पल, रिश्तों में वक्त और प्यार की बजाय हम पैसे और गिफ्ट देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि टाइम देने से तो आसान लगता है कि जाएं और बीवी बच्चों को महंगे गिफ्ट खरीदें और ये प्रूव कर दें कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। पर ये जिंदगी की हकीकत नहीं है। वेल, व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज्ड टू डू देन? वेल, आई विल डेफिनेटली शेयर आफ्टर दिस नेक्स्ट नंबर। स्टे ट्यून्ड टू 106.3 FM शो। आपका अपना है कल्चर ऑफ पंजाब, व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय देव दादला।

0: पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: एह सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: लगता है कि जब हमने अपनी प्रायोरिटी सेट करने में ही भूल कर ली तो फिर वक्त और लाइफ दोनों वेस्ट कर दिए। कुछ लोगों का माइंड बस घूमता रहता है अराउंड 3 P's, पैसा, पावर एंड पोजेशंस। इनसे ऊपर उठकर सोच पाना उनके लिए शायद नामुमकिन है, पर ये सच्चाई नहीं है। और यकीन माने, जब ये भ्रम टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब स्टेज ऐसी आ जाती है कि ना तो गया वक्त हाथ आता है और ना आगे कुछ नजर आता है।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: हम लोग अक्सर खुद को बहुत सुपीरियर मानते हैं और दया की नज़र से देखते हैं स्पेशल चिल्ड्रेन और मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को, पर कहीं ना कहीं वो लोग वो बच्चे हमसे बहुत आगे हैं ह्यूमैनिटी में, इक्वालिटी में। पता है कैसे? क्योंकि हमारे पास ब्रेन है जो हर काम में लॉजिक ढूंढता है, जो हमारे दिल को सोचने की इजाज़त नहीं देता।

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: अच्छा विजुलाइज करें, सन 2006 की ये बात है। 8 बच्चे एक ट्रैक पर एक लाइन में खड़े थे, भागने के लिए बिल्कुल तैयार। रेडी स्टेडी एंड गो, टॉय पिस्टल की साउंड हुई और आठों लड़कियां भाग पड़ी। अभी 10-15 कदम की दौड़ी होंगी कि उनमें से सबसे जो छोटी लड़की थी वो गिर पड़ी, चोट लगी, दर्द की वजह से रोने लगी। बाकी 7 लड़कियां रुक गई, मुड़कर देखा और उस रोती हुई छोटी सी लड़की की तरफ वापस भागी। 7 ने उसे प्यार किया, चुप कराया और फिर एक दूसरे का हाथ थामकर इकट्ठी भागी और पहुंच गई विनिंग पोस्ट पर एक साथ। ऑफिशियल्स हैरान थे, हजारों स्पेक्टेटर्स हैरान थे, करीबन सबकी आंखें नम थी एंड विद दैट केम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। अब बताएं, है कोई शक कि है ये हम सबसे स्मार्ट और प्योर हर एंगल हर एस्पेक्ट से?

0: पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहे सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: अच्छा सभी सोच कर देखिए कि आज से सालों बाद जब वक्त हाथ से निकल जाएगा तो श्योर है कि आपके पास एक लिस्ट तैयार होगी उन कामों की, उन वर्क्स की जो इन बीते 20 सालों में आप कर सकते थे पर कर नहीं पाए। इसलिए आए तो कैन जस्ट एडवाइस की इतनी सेफ गेम खेलनी छोड़ दें एंड जस्ट एक्सप्लोर, ड्रीम एंड डिस्कवर, एम हाई, शूट फॉर द मून। नहीं भी हाथ में आया तो डजंट मैटर, तारे तो कहीं नहीं गए ना।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: रात को चांद तारों से बातें मत किया करो। कोई तबीयत के बारे में पूछे तो मौसम के बारे में मत बताया करो, वरना लोग कहेंगे कि तुम बहुत उदास हो। जी हाँ, ये सिम्टम्स यकीनन उदासी के हैं, मैं आपको बता दूँ ये तो मैंने सिर्फ कहने को ही कहा था। मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आपसे बात जो कर रही हूँ। चले खुशी में इजाफा करते हैं और लिए चलती हूँ आपको एक और ट्रैक की तरफ। आप सुनते रहे, जुड़े रहे।
4: प्रिया की

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: चले एक छोटी सी पहेली के बारे में बात करती हूँ। एक छोटा सा सपना था, उस सपने में कोई अपना था, उस सपने में कुछ सुकून था जो जिंदगी का जुनून था, उस जुनून में एक राहत थी जो सिर्फ तेरी चाहत थी, उस चाहत में एक अंदाज था जो मेरी धड़कनों का राज था, उस राज में एक खुशबू थी जो मेरी सोच की जुस्तजू थी, उस जुस्तजू में एक एहसास था जो हमेशा मेरे पास था, उसके पास होने में एक आराम था। अब सोचें क्या था वो, मैं बताऊं, वो बस सिर्फ एक तेरा नाम था।